कहूँ काश होता मदीने में मेरा वतन। शहर महबूब होगा जहां भी कहीं, वेर एवर इज गोइंग टू बी द सिटी ऑफ द बिलवड। ही सेज आई हैव हर्ड दैट द लवर, इफ यू हैव टू आस्क विच इज द मोस्ट बिलवड सिटी टू यू, विल से द सिटी इन विच माई बिलवड रिजाइड्स, दैट इज माई वतन। इफ दैट इज द केस, फिर मदीने की लज्जत को मैं क्या कहूँ, काश होता मदीने में मेरा वतन। What must I tell you about the enjoyment of Madina Sharif? How I wish that Madina Sharif was my watan. Ab na jana ho ghar humko wapas, chupke chupke ye mange duaye. Tere dar par mera sar ho ya Rab, जान इस तरह तुझ पर लुटाए, मुझको अपना

तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं, बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। रहे तलब में सवार सब हैं, पयादा मिसले गुबार में हूँ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं, बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूँ।

एक मुद्दत से आज अहले गम को मुस्कुराने की मोहलत मिलेगी. हिजाब विल बी रिमूव फ्रॉम अल्लाह तबारक व तआला'स काउंटेनेंस. एवरी पर्सन हु इज इन जन्नत विल रेज हिज आईज एंड विल बी एबल टू सी अल्लाह तबारक व तआला. नबी अलैहिस्सलाम सेड व्हेन ही वाज क्वेश्चन्ड, ही सेज, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सीइंग द फुल मून? If you don't have any problem seeing the full moon, does anybody have to push anybody to see the full moon? That's how we'll see Allah Ta'ala in Jannah. Niqab will be removed. And now will be the time to rejoice and be happy and eat and drink and make merry. No restrictions of any kind. So he says, Tujhe to maloom hai ilahi, bohat hi ganda hai haal mera. Guna mein aluda ho raha hai, ruwaan ruwaan baal baal mera. In sins, in the ocean of sins, every part of my body seems to be immersed.

यार रहूं। यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। मुझको फकत तुझ से हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हर दम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं।

खुदा निकले मेरे हर बुन मुँह से जिक्र तेरा ऐ मेरे खुदा। अब तो कभी छोड़े भी न छूटे जिक्र।

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है आशिक

कि हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला विल्स देन आई कैन प्रेजेंट दिस नात शरीफ वंस अगेन। दरोज़ा मुबारक नबी अलैहिस्सलाम।

गम गलत हो गए मासियत दुल गई, गम गलत हो गए मासियत दुल गई, मग़फ़िरत आफ़ियत।

मुर पर वो कलाम उस कले ने गए तूर पर, इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया। तेजो लेने गए खुद कली में खुदा,

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा